वेकेशन पे जाना है, श्योर थिंग, बीच, हाँ हाँ गोवा जा सकते हैं, गोकर्णा जा सकते हैं, पापा से पूछ के बताता हूँ कब जा सकते हैं। एंड आई वाज लाइक, हर चीज अपने पापा से पूछ के करेगा तू? ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की एक स्पेशल पेक्यूलियर प्रॉब्लम थी। मतलब ममाज बॉयज तो देखे थे, बट ये डैडीज बॉय ना स्पेशल केस था। हर चीज में अपने पापा से पूछता था, क्या मैं डेट पे जा सकता हूँ, पापा से पूछूंगा, तुझे क्या लेकर दूं तेरे बर्थडे के लिए, पापा से पूछूंगा, छुट्टी पर जाना है, पापा से पूछूंगा। एक पॉइंट पर ना आई स्वेयर आई थॉट आई शुड स्टॉप डेटिंग हिम एंड स्टार्ट डेटिंग हिज पापा, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये रिलेशनशिप मेरा बॉयफ्रेंड कम और उसके पापा ज्यादा चला रहे थे। आप एक बात बताओ, ममाज बॉय को तो हम सबने डेट किया, बट मेरी तरह कभी किसी पापाज बॉय को डेट किया है? इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम, इफ यू नो, और अगर आप ऐसा कर चुके हो, मेरी सिंपथीज लेने के लिए अपना नंबर भेजे इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे. हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी. लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं. और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है. हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है. We've got bigger budgets, we've got bigger marketing, we've got bigger platforms. और फिर भी क्या हम वैसे कल्चरल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे? या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं. म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन. एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं. मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म. ये तो हमने पहले भी देखा है.
0: नंबर 20.

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी। 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है। और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल ये है, जब 2001 में ये मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स हैं, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते। क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 10.

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्ला वल्ला वल्ला। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्ला। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। नाउ हार्डी संधु इस गाने में गाते कम हैं, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, इन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसलकर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 8।

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने ही नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिखकर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है। स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3
2: वाह

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। अ कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स अ टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोककर, हर नई एंट्री को देखकर बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते। नंबर 1।

बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें बाकी टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। Until the next time we meet, this is Suren, over and out. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने। एक नई एंट्री है हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की, विच इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। वर्ल्ड म्यूजिक डे का वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन और मिर्ची। शुरुआत करते हैं ऑन दिस काउंटडाउन विद गाना नंबर 10, अनीश सरकार हृदय का गाना। गाने का नाम है उड़ी उड़ी। दो हफ्ते से इस पोजीशन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद द कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का गाना। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी इज ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10. 10, 10, 10.

0: वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, लेकिन जो ये वाला गाना है आदित्य रिखारी की आवाज, रैवेटोर का म्यूजिक अलोंग विद कुटले खान, ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न म्यूजिक। एक पॉप स्टार, एक फोक आर्टिस्ट और एक कंटेम्प्रेरी उबर कूल प्रोड्यूसर, ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaiye. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I truly, really, dil se believe that gaane share karne se pyar badhta hai. Now is countdown ka jo agle wala gaana hai, wo ek tarah se hum sabke experiences ko kahin na kahin capture karta hai. Aap, main, har koi ek journey par hai. Destiny तो आने वाली है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत खूबसूरत और हम इसको तय करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपने सपनों के पीछे हम काम कर रहे हैं। एंड समहाउ इंडिपेंडेंट म्यूजिक एग्जैक्टली उन फीलिंग्स को कैप्चर कर पाता है जो फिल्म म्यूजिक बड़े पर्दे पे उतरने वाली कहानियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये वाली फीलिंग मे बी उस किरदार के लिए हो, बट व्हेन इट्स अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक वो मेरी आपकी आर्टिस्ट की ऑनेस्ट फीलिंग है। यू नो, वो वाली फीलिंग जब हमारा सपना पूरा भी नहीं हुआ, पर हम इतना तो आगे आ चुके हैं दैट वापस नहीं जा सकते, पर अब इतना आगे भी नहीं आए हैं कि सेलिब्रेट करना शुरू करें। गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम, इट्स बाय MC स्क्वायर, राधिका भिडे एंड विकेट सनी। मे बी ये नाम आपके लिए नए हो, लेकिन जब आप गाना सुनेंगे आई नो इट विल हिट होम। म्यूजिक, गाने के लिरिक्स उस जर्नी को एक्नॉलेज करता है जो मुझे पता है यू आर ऑलरेडी ऑन इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ नई नवेली एंट्री, इस गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय MC स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8। किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए, दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ, मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ, है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छांव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है, वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है, घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट तो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं, चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं, टूटा है दिल टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है, लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

एक आवे नीम की डाली मेरे सुपने में, एक घेर पड़ा कति खाली मेरे सुपने में, एक अरहड़ भरी ट्राली मेरे सुपने में।

खेत जगे सरवाड़े में एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काठ के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चका चौंध के जाड़े में।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 6 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना बताना है, कोई किस्सा कहानी शेयर करनी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट जो गाने हमें पसंद आते हैं ना, जो एक्चुअल में दिल से पसंद आते हैं, जो हम जितनी बार सुने उतना कम लगता है, वो शायद उस गाने के साथ जुड़ा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स इज मेलोडी, लिरिक्स, आर्टिस्ट्री, वो सब है, एंड कूडोस टू दैट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्टिस्ट। बट आज मैं ना उस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा कैसे होता है दैट एक ही गाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए वो पहले ब्रेकअप का गाना है, किसी के लिए एक शाम जब वो अकेले थे छत पे बैठ के आसमान देख रहे थे, मे बी उस गाने की दो लाइन जो सीधा उनके दिल के उस स्पॉट को हिट कर गई जो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जिस्ट भी करता है। एंड ऐसा वंस इन रेयर ब्लू मून होता है ना, कोई गाना ऐसा दिल में उतरता है कि जब हम कुछ सालों बाद उस गाने को सुनते हैं, वो गाना तो अच्छा लगता ही है, बट वी ऑल्सो रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस, उस दिन जैसा फील हुआ था। क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम वर्ल्ड म्यूजिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, म्यूजिक इज ऑल अबाउट How it makes us feel. I want to tell you about this one song, जिसको जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ गए थे। साल 2016 की बात है, मेरा पहला गोवा ट्रिप मेरे दोस्तों के साथ। हम वैगेटर बीच पे थे, रात को 2 बज रहे थे, मजे कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे दोस्त जैम कर रहे थे, मेरा एक दोस्त गाना गा रहा था और अपना गिटार उठाया एंड उसने ये गाना गाया।
2: शाम तन्हा,
0: कॉल्ड शाम तन्हा बाय अग्नि। मैं पूरा गाना आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट दिस सॉन्ग मेड मी फील बैक देन। उसने कुछ अलग नहीं किया मेरे दोस्त ने, कोई ऐसे परफॉर्मेंस में चार चांद नहीं लगे, उसकी आवाज थी, समुंदर की हवा थी, या वो लाइन्स दैट तेरे जाने से मैं अधूरा रह गया, आई स्टिल डोंट नो वॉट वॉज इट, बट दैट सॉन्ग मेड मी वीप। मैं आंखें चुरा चुरा के अपने दोस्तों से रो रही थी, बिकॉज इट मेड मी फील समथिंग जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं फील कर रही हूँ उस गाने से पहले। इट इज अ गॉर्जियस सॉन्ग, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्सपीरियंस दिस विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज वेरी चेरिश्ड मेमोरीज एंड वेरी चेरिश्ड सॉन्ग फॉर मी। हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आज मेरी पसंद का स्पॉटलाइट अग्नि द बैंड का गाना, गाने का नाम है शाम तन्हा। ट्रस्ट मी, दिस वन विल हिट होम। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

माय गॉड, 100 times ओवर दिस सॉन्ग स्टिल मेक्स मी फील दैट वे. मोहन करण की आवाज, अग्नि द बैंड का गाना, दैट वॉज शाम तन्हा. At RJ Kanega on Instagram par aao, tell me about a song like this which made you feel so strongly that aaj bhi jab aap gaane ko sunte ho, you go back to that experience jab ye gaana sabse zyada hit kiya tha. At RJ Kanega par aakar quickly is indie pop quiz ka bhi answer kare. Agni the band ka ek gaana tha jo ek reality TV show par aaya tha, which was all about love. Thoda sa hint dete hain aapko. At RJ Kanega par aake batao kaun sa hai ye gaana.

0: Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है अर्ज किया है. 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर अर्ज किया है. इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: दिलजीत दोसांझ, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? इस साल तो आंसर नहीं मिलने वाला है। उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हर हफ्ते वी रिसीव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट फॉर आवर फेवरेट सेगमेंट ऑफ द शो व्हिच इज कॉल्ड हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
2: मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना, ऐसे जाने ना दूंगा जाना।
0: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज, एक सेकंड, मैं थोड़ी ड्रामेटिक हो रही हूँ, बिकॉज दिस हैज बीन द मोस्ट रिक्वेस्टेड कैसेट क्लासिक ऑफ ऑल टाइम। मुझे इतना ऑनर फील होता है ना जब मैं वो गाने प्ले करती हूँ जिनको सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। एंड आज का कैसेट क्लासिक एग्जैक्टली वही वाला गाना है। इट्स मायरी बाय यूफोरिया। ये गाना सिर्फ यूफोरिया का डेफिनेशन सॉन्ग नहीं है, बल्कि इंडी पॉप एज अ जॉनरा का पूरा डिफाइनिंग साउंड बन गया था। एक पूरी जेनरेशन की कलेक्टिव मेमोरी है ये गाना। इवन टिल डेट आई थिंक द जेन जीज, पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2000s, जब लोग इस गाने को डिस्कवर करते हैं, इसकी म्यूजिकलिटी से इंट्रोड्यूस होते हैं, आई नो द सॉन्ग इज स्टिल फाइंडिंग न्यू ऑडियंस एवरी डे। बट आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू द यूफोरिया डेज। साल था 1998, केबल टीवी नया था एंड हिंदी फिल्म म्यूजिक वॉज एवरीथिंग। इंडियन इंडी जैसा कुछ ऐसा था नहीं, बट कहते हैं ना, सम पीपल हैव गॉट दैट क्रेजी इन देम। ऐसे एक आर्टिस्ट थे डॉक्टर पलाश सेन। एक्चुअली डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, लखनऊ में पैदा हुए, दिल्ली में पले बड़े। उन्होंने अपना एक रॉक बैंड बनाया हिंदी में, एंड दैट वाज यूफोरिया। पहली एल्बम आई कॉल्ड धूम, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने डांस किया, फुल ऑन सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक। फिर साल 2000 में आई उनकी दूसरी एल्बम कॉल्ड फिर धूम, और उस एल्बम में था ये गाना मायरी। ये कुछ अलग था, कुछ अलग ही हो गया था। एंड धीरे धीरे सबको इस बात का अंदाजा हो रहा था, ये गाना कहीं कहीं में आपको एक स्पिरिचुअल स्पेस में ले जाता है, कहीं रोमांटिक स्पेस में, बट अंडरलाइंग इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग। लेकिन वो अपने प्यार को चेरिश कर रहे हैं, और उसको चेरिश करते हुए पलाश सेन इस गाने के थ्रू अपनी मदर को वो कहानी सुना रहे हैं। मायरी याद वो आयरी, कि मुझे उसकी याद आ रही है जो अब मेरी लाइफ में नहीं है, विच इज सो क्यूट। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, इससे पहले कि मैं यहाँ रोने लग जाऊँ इस गाने के बारे में बात करते हुए। द सॉन्ग विच इज मोर देन अ सॉन्ग, इट्स एन इमोशन, इट्स अ जर्नी बैक टू अवर चाइल्डहुड, अ लव सॉन्ग जो डॉक्टर पलाश सेन ने अपनी मदर के लिए लिखा। गाने का नाम है मायरी बाय द वन एंड ओनली यूफोरिया। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: आई थिंक इस गाने के बाद कैसेट क्लासिक को हमें टाइम मशीन बुलाना चाहिए था, बिकॉज आई वॉज टेकन बैक टू द टाइम. गाना जब शुरू होता है वो चार स्ट्रिंग्स बजते हैं एंड आई एम टेकन टू दिस डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ जिंदगी बहुत सिंपल है, दोस्त तुम्हारे करीब है एंड फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पलाश सेन, द जीनियस दैट यू आर, दैट वॉज मायरी बाय यूफोरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. ट्रस्ट मी, वी टेक योर रिकमेंडेशंस वेरी सीरियसली. इस गाने को प्ले करने में कुछ वक्त लग गया, बट वो जो भी गाना है फ्रॉम द 90s 2000s व्हिच यू थिंक इज स्टिल द सॉन्ग दैट डिजर्व्स ऑल द लव, हमसे आगे शेयर करो. अश्का है माय साउंड प्रोड्यूसर एंड आई विल प्ले अ सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है बैरन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट। इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: सुन रहे हैं आप। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। ये वो शो है जो हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर दिस वीक वाज उड़ी उड़ी बाय अनीश सरकार एंड हृदय। फिर आदित्य रिखारी रावट और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। नई नवेली एंट्री लॉन्ग वे फ्रॉम होम दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 7। मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 6। अनूप जैन का अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: दिलजीत दोसांझ द डीलर ऑन गाना नंबर 4।
3: जिधर तू पीछे यातनगीना चोपर जोगी डाब दबीना।
1: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 3।
4: मन सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गे।
1: द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके संजू राठौड़ का बैंगल्स। दो हफ्ते से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, येट अगेन करण औजला इक्की का गाना बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर, स्टिल ट्रेंडिंग एंड हाउ बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। बैंगल्स ऑन गाना नंबर 2 एंड देन बॉयफ्रेंड बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Mirchi. It's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आदमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

officially an adult जब तुम्हारा biggest morning adventure is finding where you kept your phone last night. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Good morning. This is मिर्ची mornings जो कि अभी शुरू हुआ है. ये वो शो है जो चाय से ज्यादा गर्म है, कॉफी से ज्यादा aromatic है और ब्रेकफास्ट से ज्यादा क्रिस्पी है. So, फिलहाल अभी तुम ड्राइव कर रहे हो टुवर्ड्स योर वर्क, या फिर यू आर स्टक इन ट्रैफिक, या फिर कैचिंग द ट्रेन, या फिर प्रिटेंडिंग यू आर वर्किंग फ्रॉम होम व्हाइल मेकिंग योर थर्ड कप ऑफ चाय एंड आलू का परांठा. आई हैव गॉट यू कंपनी. यहाँ पर मिलने वाला तुम्हें बॉलीवुड मस्ती, फील गुड स्टोरीज, थोड़ी सी गॉसिप, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें एंड ऑफ कोर्स मिर्चीदार बैंगर्स. सो डोंट यू वरी, आई एम गोइंग टू प्ले सम सॉन्ग्स दैट विल बी योर दिल का प्लेलिस्ट. सो बकल अप, सिप दैट चाय और कॉफी एंड हैव योर ब्रेकफास्ट व्हाइल कीपिंग मी कंपनी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड इफ यू एंजॉय माय वॉइस, जाकर मुझे फॉलो भी कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसला और सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और सबसे पहले चलते हैं 1483 पर, जब रिचर्ड द थर्ड ऑफिशियली बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। फास्ट फॉरवर्ड टू 1945, दुनिया ने एक होपफुल चैप्टर शुरू किया विद द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। फिर 1948 में द बर्लिन एयरलिफ्ट बिगन। प्लेन्स कैरिंग फूड एंड सप्लाईज प्रूव्ड दैट कभी कभी सुपर हीरो स्केप नहीं बल्कि कार्गो प्लेन्स चलाते हैं। 1963 में प्रेसिडेंट

John F. Kennedy stood in West Berlin with this iconic Ich bin ein Berliner speech. Or 1974, may believe it or not, a packet of chewing gum became the first product ever scanned with a barcode. 1977 saw Elvis Presley perform his final concert. Or 1997 mein, pata hai kya hua, every kid and honestly every adult received their Hogwarts acceptance letter in spirit when the very first Harry Potter book hit the shelves. Then 2000 gave us the first working draft of the human genome. And 2015 became another landmark year when same-sex marriage was legalized across the United States. तो एक ही दिन पर काफी कुछ बीता है अलग अलग सालों में. अभी फिलहाल इस साल और इस मिनट हम सुनने वाले हैं मिर्ची दार बैंगर्स इन जस्ट अ वाइल. फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के T20 कैप्टन श्रेयस अय्यर के बारे में। ही हैज गॉन अहेड एंड अपडेटेड हिज इंस्टाग्राम बायो। अब तुम पूछोगे इसमें कौन सी नई बात है, यहाँ पर कुछ सुपर क्रिप्टिक हुआ है। ही एडेड सेकेंड DOB 25/12/2025। अब ये है क्या, बर्थडे 2.0, फ्यूचर वर्जन का अपडेट या फिर टाइम ट्रेवल का सॉफ्ट लॉन्च? Nobody knows. Fans जो हैं वो फुल शर्लॉक होम्स मोड में जा चुके हैं। Some are saying it could be linked to his recovery journey after a serious injury during the ODI series against Australia last year. While others are like, bro just likes December vibes. Honestly, Instagram bios these days are either motivational quotes or full-time Netflix के cliffhangers. अब इसके बारे में श्रेयस ही बता पाएंगे। आई होप वो जल्दी से इसको डीकोड करके बता दे, वरना फैंस जो है उनकी धड़कनें तो रुकी हुई है। और अगर तुम इसको डीकोड कर पाए हो तो फटाफट से मुझे DM करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: One more email.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स का वेदर रिपोर्ट। यहाँ पर अभी फोरकास्ट क्या है मौसम का पता करते हैं। राइट नाउ इट्स अराउंड 68 डिग्रीज फारेनहाइट, क्लाउडी स्काइज हैंगिंग ओवरहेड, जस्ट लाइक दैट 100 व्हाट्सएप मैसेज दैट यू आर अवॉइडिंग। इट एक्चुअली फील्स लाइक 69 डिग्रीज फारेनहाइट बिकॉज वेदर इज लाइक आई जस्ट नीड टू एडजस्ट माई सेल्फ अ लिटिल बिट व्हाइल यू बेयर विद मी। एंड नाउ लिसन केयरफुली, रेन इज प्लेइंग प्रीटी शाय टुडे। लास्ट 24 आवर्स में बेयरली 1 मिलीमीटर की ड्रिजल हुई, मानो बरसात ने आकर सिर्फ हेलो बोला है आधा और निकल लिया। नेक्स्ट 24 आवर्स में अराउंड 1 मिलीमीटर की बरसात और एक्सपेक्टेड है। सो आज के दिन अपना अम्ब्रेला कैरी करना बिल्कुल मत भूलना। और आज का टेम्परेचर रेंज जाएगा फ्रॉम 67 डिग्री फारेनहाइट टू 85 डिग्री फारेनहाइट, ऑलमोस्ट सेम वाइब्स एज यस्टरडे, सिर्फ आज थोड़ा सा वार्म है। सो आज के दिन आउटफिट एडवाइस इज लेयर के प्लेयर बनो, कंफ्यूज मत रहो, स्टाइलिश रहो, मिर्ची की वाइब अपने साथ कैरी करो, अम्ब्रेला कैरी करो एंड SPF 50++++ वाला सनब्लॉक लगाकर बिल्कुल बाहर जाना, और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। एंड मिर्ची पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने रहो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कन्हैया लाल की।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स जानने का टाइम, यानी कि मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले हार्ट टचिंग स्टोरी, अ 94 ईयर ओल्ड आंध्र वुमन कोंद्रा गुंटा महालक्ष्मम्मा ने US सिटीजनशिप गिव अप करके फिर से इंडियन बनने की अपील की है। शी लिटरली सेड, मैं इंडिया में ही अपनी लास्ट ब्रेथ लेना चाहती हूँ। नंबर टू पर सीरियस नोट, राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट केस में 8 लोगों पर चार्जेस लगे हैं फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ डोनेशंस एंड रिप्लेसिंग वैल्यूएबल्स विद फेक्स, लीगल एक्शंस आर ऑनगोइंग। एंड नंबर थ्री पर स्पोर्ट्स से, ऑस्ट्रेलिया हैज रीच्ड द फीफा वर्ल्ड कप 2026 नॉकआउट्स आफ्टर अ गोललेस ड्रॉ विद पैराग्वे। Coach says they'll try to do something special in Dallas. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisila, tumhare saath mein. Mujhse connect karna chahte ho, to Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp on mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

कुत्ता आग लगे जानी जान के जान तू जान से बढ़कर मेरी। मैं थोड़ा तेरी आंखों पे मर गया, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया, तू थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो तो सारा मेरा जाम बिखर गया।

Hey there, दोस्तों, मैं हूँ प्रसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और आज की स्पॉटलाइट में है इंडिया का राइजिंग स्टार वैभव सूर्यवंशी, हु इज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड एंड ही इज ऑलरेडी मेकिंग हेडलाइंस। ये लड़का ना वाइट बॉल टूर ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड के लिए जर्सी नंबर 3 पहनने वाला है। अब ट्विस्ट ये है कि पहले राजस्थान रॉयल्स में यूजी नंबर 12 पहना करते थे ये, बट दिस टाइम नंबर 3 इज नॉट रैंडम, इट्स एक्चुअली अ मैथमेटिकल डेस्टिनी। अपेरेंटली हिज suggested to switch because 1+2 is equal to 3. मतलब यहाँ पर selection committee नहीं बल्कि घर की math teacher का full contribution है। And fun fact ये है कि jersey number 3 इंडिया में पहले legends ने भी wear किया है, like Harbhajan Singh and Suresh Raina. So pressure भी काफी बना हुआ है वैभव के ऊपर, और legacy तो है ही। Honestly, cricket is the only place where your jersey number can have more backstory than your biography. और वैभव के केस में तो एक्चुअली उनकी बायोग्राफी सिर्फ 15 साल पुरानी अभी तक। सो बेसिकली वैभव से अगर पूछा जाएगा तो शायद वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने जर्सी का नंबर नहीं चूज किया बल्कि एक लाइफ की इक्वेशन सॉल्व कर दी है, वो भी अपनी मम्मी की हेल्प से। Well, तुम्हारी लाइफ में किसी नंबर का कोई सिग्निफिकेंस है तो मुझसे शेयर करो, डीएम करो मुझे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, जप्पी टू यू एंड पप्पी टू यू। आज का दिन सिर्फ केक और कैलोरीज का नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट शेयरिंग योर स्पेशल डे विद रियली कूल पीपल। एंड यू गॉट द पावर हाउस वोकलिस्ट आरियाना ग्रांडे विद यू सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे। बॉलीवुड से भी आज बर्थडे है एक्टर अर्जुन कपूर का। प्रूफ कि अगर तुम्हारी मूवी ब्लॉकबस्टर ना भी हो तब भी तुम्हारा बर्थडे आता है। टीवी कॉमेडी लवर्स से हेलो टू शॉन हेज। एंड ऑफ कोर्स वीव गॉट एक्टर म्यूजिशियन जेसन स्क्वाट्समैन। और साथ साथ में इफ यू ग्रू अप वॉचिंग आई कार्ली यू विल नो जेनेट मैकर्डी। इन सब का आज हैप्पी वाला बर्थडे और साथ में तुम्हारा है। तो अगर आज के दिन तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे तो इट्स एन ऑफिशियल रिमाइंडर दैट यू शेयर योर डे विद सम रियली कूल सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियन, ऑथर्स एंड होपफुली समवन हु इज कटिंग यू अ रियली बिग स्लाइस ऑफ केक। और तुम वो केक मेरे साथ शेयर कर सकते हो, अपने बर्थडे शाउट आउट शेयर कर सकते हो, अपने बर्थडे इनवाइट्स मुझे भेज सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम। इफ यू गेट कंफ्यूज कहाँ कॉन्टैक्ट करना है मुझे, MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: lovers and jewelry wish listers, time now is for a quick gold rate update on Virchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
1: Jewels wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड रेटिंग एट $4,150 4,150 के साथ आज गोल्ड की प्राइस कल से अबाउट $100 चीपर ट्रेड कर रहे हैं। राज ज्वेल्स के साथ इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें। वो खूबसूरत सा तोहफा 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, गोल्ड ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, प्लैटिनम बैंड्स, प्लैटिनम मेंस कफ। फादर्स डे की सिलेक्शन के लिए घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट पे 0 डाउन पेमेंट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 किश्तों में पैसे दें। आइए फादर्स डे की सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: There you go, your sparkle report for the day is here. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में, मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. फर्स्ट अप, एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को फुल ऑन प्रीमियम मोड में भेज दिया है. मैकबुक प्रो, आईपैड प्रो सबको अपग्रेड मिल गया है, बट सैडली सैलरीज नहीं बढ़ी है. रिपोर्टेडली सम मॉडल्स इन इंडिया आर टचिंग लैक्स, एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट बाइंग अ मैकबुक फील्स लाइक अडॉप्टिंग अ स्मॉल लग्जरी पेट. नंबर टू पर रिपोर्ट से अ सिंगापुर फ्लैग्ड कार्गो शिप वॉज स्ट्रक वाइल पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मोज आफ्टर टेंशंस इन द रीजन. ऑफिशियल्स आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली, एंड फाइनली सम रिलीफ इन इंडिया. गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज, रिस्टोरिंग लेवल्स क्लोजर टू द प्री क्राइसिस टाइम्स. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजर्स कैन फाइनली ब्रीद अ बिट ईजियर बैक होम. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर के 3 फॉर दिस आवर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: गुड मॉर्निंग माय देसी फैमिली, दिस इज प्रिसिला विद यू। और आप बारी आ चुकी है पता करने की कि आज का दिन कैसा जाने वाला है, एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि, अननेसेसरी टेंशन मत लो। योर टैलेंट्स आर योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट टुडे। टेक भी आज तुम्हारा दोस्त बन सकता है। लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग यार। जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है उसे फिनिश लाइन तक ले जाना तुम्हारा काम है। मार्स इज गिविंग यू वन लास्ट मोटिवेशनल पुश। कॉफी ऑप्शनल है आज के दिन, लेकिन एक्शन कंपल्सरी है। लकी कलर तुम्हारा है रस्ट ऑरेंज, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, हर चीज कंट्रोल नहीं होती है, जो बदल नहीं सकते हो उसको छोड़ दो। जो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करो। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 6। कैंसर यानी कर्क राशि, आज हाफ हार्टेड एफर्ट्स बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं। फुल स्पीड अहेड, फिनिश लाइन तुम्हारा वेट कर रही है और राइवल्स भी, सो बी केयरफुल। लकी कलर इज कोरल रेड, लकी नंबर इज 19। लियो यानी कि सिंह राशि, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को आज बस तुम्हारी एक स्माइल की जरूरत हो सकती है। आज तुम किसी और के सनशाइन बन सकते हो और प्लीज बन जाना। लकी कलर इज गोल्डन येलो, लकी नंबर इज 31। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती है यार, आज थोड़ा सा डिस्टेंस ही बेस्ट मेडिसिन है। पीस भी एक सुपर पावर होती है, जस्ट रियलाइज दैट। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 9। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 1। ये याद रखो कि हॉरोस्कोप जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, तुम्हें फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा सकता। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। थोड़ी सी देर में आती हूँ बाकी बची 6 राशियों को लेकर, तब तक तुम ये मिर्चीदार बैंगर्स एंजॉय करो। वाइब विद मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

पाता है, ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: आज का बिगेस्ट लाइफ हैक है कि कभी कभी गूगल मैप से पहले हमारे स्टार्स के डायरेक्शन सुन लेने चाहिए। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज राशि जोन का पार्ट टू, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, शॉपिंग का मोड फुल ऑन है, बस वॉलेट को भी थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना, फन करो लेकिन बजट को गोस्ट नहीं करने का। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इससे डरना नहीं है, कभी कभी वही बेस्ट चैप्टर होता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, किसी अपने को रियलिटी एक्सेप्ट कराने में आज तुम हेल्प करो, एडवाइस देने से पहले सुनना मत भूलना, लेकिन कभी कभी ईयर्स आर मोर पावरफुल देन योर माउथ। लकी कलर इज फॉरेस्ट ग्रीन, लकी नंबर इज 35। केप्रिकॉन यानी मकर राशि, फ्रेंडशिप में थोड़ी एक्स्ट्रा केमिस्ट्री फील हो सकती है, लव स्टोरी बने या बेस्ट फ्रेंडशिप रहे, दोनों सिचुएशन में तुम्हें स्माइल गारंटीड मिलने वाली है। लकी कलर इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 4। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज डिप्लोमेसी इज योर सुपर पावर, किसी सेंसिटिव पर्सन को अननेसेसरली रोस्ट करने का टेम्पटेशन हो सकता है, उसे रेजिस्ट करना क्योंकि शायद तुम किसी को दुख पहुंचा दो। सैवेज बनना लेटर, अभी फिलहाल पीसफुल बने रहो। लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 17। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसीज यानी कि मीन राशि, वरी को ना आज छुट्टी दे दो, बाहर निकालो घर से, एंजॉय करो अपनी लाइफ, फ्रेंड्स से मिलो, अच्छा खाना खाओ, ऐश करो, यूनिवर्स लिटरली वॉन्ट्स यू टू हैव फन टूडे। लकी कलर इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 30। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट द्वितीय। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड और एक्स पर अगर घूमी घूमी कर रहे हो तो मुझे भी जाकर फॉलो कर लो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब दो खुशखबरियां देकर यहाँ से निकलने वाली हूँ मैं। सबसे पहले तो ह्यूज वूहू टू आवर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, दे हैव डिफीटेड होस्ट न्यूजीलैंड 2-0 टू लिफ्ट द FIH वुमेन्स नेशंस कप, their second Nations Cup title, and the victory also earns them promotion back to the prestigious FIH Pro League next season. What a comeback! Unbeaten throughout the tournament, solid defense, brilliant teamwork, aur ek reminder ki Indian women are absolutely smashing it on the world stage. और दूसरी हेडलाइन है, पाकिस्तान हैज अनाउंस्ड दैट इट विल रिमूव द 18% सेल्स टैक्स ऑन सैनिटरी पैड्स एंड अदर पीरियड प्रोडक्ट्स आफ्टर अ कैंपेन हाईलाइटेड दैट दीज आर एसेंशियल हेल्थ केयर आइटम्स नॉट लग्जरी प्रोडक्ट्स। इट्स अ मूव दैट मेनी हेल्थ एडवोकेट्स हैव वेलकम्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड मेकिंग मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू वुमेन। देखा, ये दोनों स्टोरीज में से पहली हमें रिमाइंड करती है कि टीम वर्क कैन अचीव एनीथिंग, एंड द अदर रिमाइंड्स अस दैट समटाइम्स मीनिंगफुल चेंजेस स्टार्ट विद पीपल स्पीकिंग अप। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ, फॉर वुमेन स्पेशली, इट्स टाइम फॉर मी टू हेड आउट। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर कम्यूट, योर किचन, योर ऑफिस डेस्क या फिर योर लाइफ फॉर अ वाइल। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मिर्ची मॉर्निंग्स का दी एंड होता है यहाँ पर आज के लिए, इस वीक के लिए। मिलूंगी तुम्हें मंडे को, तब तक के लिए तुम खाओ पियो ऐश करो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Michi. It's hot.

0: जो एक्नॉलेजमेंट की भूख है ना हमारी, ये आज की नहीं है, बचपन की है यारो।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And you know what? ये acknowledgement वाला जो scene है ना हमारी life में, आज हम लोग सीख करते हैं कि you know हमारे जो Instagram profiles हैं, वहाँ पर हमें या तो blue tick मिल जाए, या फिर हमारे posts जो हैं, हम check करते रहते हैं कि कितने likes आए, कितने likes आए, stories check करते रहते हैं, किस किसने देखा, किस किसने like किया, है ना? लेकिन बचपन में भी हम ऐसे ही थे, हमें एक्नॉलेजमेंट की जरूरत पड़ा करती थी। और बचपन में एक्नॉलेजमेंट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर तो नहीं था, लेकिन हमारी किताबों में हुआ करता था, कॉपियों में हुआ करता था, जब हमारी क्लास टीचर्स और टीचर्स हमें रिमार्क्स दिया करती थी, वेरी गुड दिया करती थी, या तो स्टार्स दिया करती थी, 1 star, 2 star, 3 star, 5 stars। ओ हो भाई साहब, आई थिंक वी यूज टू लिव फॉर दोज डेज, जब हमारी कॉपियों में ये स्टार्स बने, ये रिमार्क्स आए कि हम वेरी गुड हैं, एक्सेलेंट है, ओहो, दिन बन जाया करता था हमारा, है ना? ऐसे ही ना आज के टाइम पर क्या हो गया है ना कि लोग मुंह जुबानी, मतलब बड़े होने के बाद ना एक दूसरे की मुंह जुबानी तारीफें करनी ना लोगों ने बहुत कम कर दिया। तो क्या होता है कि हम ना सोशल मीडिया से एक्नॉलेजमेंट ढूंढने लग जाते हैं कि यार कोई तो है जिसे हमारी वक्त है, जो हमारी तारीफ कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल लाइक। एंड आई रियली फील कि यार अगर आपको किसी के बारे में कोई चीज पसंद आ रही है ना, तो सीधे जाके बोलो ना, ऐसे मुंह में दही जमा के रखने का क्या ही मतलब है यार, और नहीं तो क्या यार, लाइफ का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं, किसी और को खुश कर दो, खुद खुश हो जाओ। आज किसी की तारीफ करोगे ना तो पलट के आपको भी कहीं ना कहीं किसी से तारीफ मिल जाएगी, क्योंकि व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। ओ माय गॉड, सो डीप सारा। चलो यार, नाउ विद दिस थॉट, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल देती हूँ, इससे पहले कि मेरे प्रवचन चालू हो जाए। यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऐश्वर्या राय ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक डी ग्लैम रोल प्ले किया था इन द मूवी रेनकोट।
2: मिर्ची VCR।
3: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And you know, रेनकोट जो मूवी थी जो हम में से काफी सारे लोगों ने नहीं देखी, हालांकि मैंने देखी थी and I really liked the film. दो ये फिल्म बड़ी स्लो है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। द रीजन इज द डायरेक्टर ऋतुपर्णो घोष। नाउ ऋतुपर्णो घोष जो थे ना, उनको चाहिए था कि ये जो फिल्म है ना, ये अपने पेस पर चले। और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि एक्टर्स जो है वो साइलेंट रहे हैं, एंड ऋतुपर्णो घोष ने कहा था कि आई वॉन्ट दैट साइलेंस, आई डोंट वॉन्ट डायलॉग्स ऑल द टाइम, आई वॉन्ट कि तुम उस साइलेंस को भी एक्ट करो, उसे जियो ऑन द कैमरा, सो दैट वो साइलेंस भी दो लोगों के बीच की कश्मकश जो है ना, उसको बयान करे। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, आई मस्ट से। एंड रेनकोट एज द टाइटल गोज, इस फिल्म के अंदर भी एक रेनकोट था जो कैरी कर रहे थे अजय देवगन। नाउ यहाँ पर इस रेनकोट को जो दिखाया गया ना फिल्म के अंदर, वो सिर्फ एक प्रॉप नहीं था बल्कि एक सिंबल था। और जिस जिसने ये फिल्म देखी है और जिस जिसने ये रेनकोट उस फिल्म में देखा है, तो हमने देखा है कि पुराना सा एक गंदा सा रेनकोट होता था जो कि बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, ऋतुपर्णो घोष, उन्होंने ही इंसिस्ट किया था कि इसी तरीके का हम एक रेनकोट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है एक तो गरीबी को, एंड देन ऑल्सो थोड़ा सा डेप्थ वाला मीनिंग था, लव एंड लॉस। मजे की बात तो ये है कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी इन कोलकाता ना, एट दैट टाइम इट वाज रेनिंग, जो कि एक बड़ा ही रेयर कोइंसिडेंस था। एंड देयर वाज दिस वन सीन इन द मूवी जहां पे ऐश्वर्या आईने में देखकर साइलेंटली रो रही होती है, एंड वो शॉट ऐश्वर्या ने एक सिंगल टेक में दिया था, उसको रिहर्स भी नहीं किया था, क्योंकि घोष साहब ने ऐश्वर्या को कहा था कि तुम्हें अपनी आंखों में देखना है और कुछ ऐसा याद करना है जो तुमने अपनी जिंदगी में खोया है। गॉड नोज व्हाट वाज दैट, बिकॉज द सीन केम आउट टू बी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट जो ऐश्वर्या का घर था उसमें ऋतुपर्णो घोष ने खुद सारी अरेंजमेंट करी थी कि कहाँ पर वो जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उन्हें रखना चाहिए, कहाँ पर फटा हुआ कुशन होना चाहिए, कहाँ पर ये टिक टिक करता हुआ बल्ब जलना चाहिए। वो चाहते थे कि जो व्यूअर्स है ना, उनको इस सफोकेशन को महसूस करने का मौका मिले जो कि ये कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर रहे हैं। बाप रे बाप, What a vision of a director, right? अगर आपने रेनकोट नहीं देखी है ना, तो I would suggest go back in those times, watch it now. Stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ऐश्वर्या राय एंड अजय देवगन, ये दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, राइट? और जब ये लोग रेनकोट कर रहे थे, उस वक्त जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं ऋतुपर्णो घोष, उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी ना, वो बंगाली में थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि घोष जो थे वो हिंदी नहीं लिख सकते थे, तो फिर उन्होंने एक फेमस पर्सनालिटी हुआ करती थी उषा गांगुली, उनसे मदद ली एंड देन उस स्क्रिप्ट को हिंदी में कन्वर्ट किया। एंड ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म ना, ऋतुपर्णो घोष अपने एक्टर्स को बार बार टेक लेने के लिए नहीं बोलते थे, वो सिर्फ कैमरा रोल कर दिया करते थे और उसके बाद कट बोलना ना बहुत लेट आता था, क्योंकि इट वॉज वेरी क्लियर, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर ऑन द सेट कि पहले तो कि इस सेट के ऊपर पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए सो दैट द एक्टर्स दे कैन इमर्ज देमसेल्व्स इनटू द कैरेक्टर। और दूसरी चीज उन्होंने ये कह दिया था कि भाई जो एक्टर्स है ना, यानी कि ऐश्वर्या एंड अजय देवगन, इनको अपनी फीलिंग्स को बस जीना है। कितनी दफा तो ऐसा हुआ है कि सीन इन लोगों ने स्क्रिप्ट के हिसाब से फॉलो ही नहीं किया है और जो इमोशन आ रहा था या कुछ बोला जा रहा था वो दिल से कहा जा रहा था, ना ही अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, बट द कैमरा केप्ट ऑन रोलिंग। एंड इन एन इंटरव्यू ऐश्वर्या ने इस बात का जिक्र किया था कि ऋतुपर्णो घोष ना सीन के लिए डायरेक्शन देने के लिए कट नहीं बोला करते थे, वो धीरे धीरे विस्पर किया करते थे सो दैट एक्टर्स को समझ में आ जाए, यानी कि अजय देवगन और ऐश्वर्या को समझ में आ जाए कि वो क्या कह रहे हैं। और वो सीन के दौरान ही ना इंस्ट्रक्शंस देते हुए विस्पर करते हुए अपना कैमरा रोल रखते थे सो दैट एक्टर्स जो हैं वो फौरन से जो डायरेक्टर बोल रहे हैं उसको फॉलो करके अपने कैरेक्टर को पकड़ पाए, अपने एक्सप्रेशंस को पकड़ पाए। ये भी कहा जाता है कि अजय देवगन जो वैसे भी लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, वो इस सेट पे तो और ज्यादा ही साइलेंट हो गए थे क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में रहना चाह रहे थे, जो कि बड़ा ही सॉफ्ट स्पोकन, बड़ा ही सैड सा बंदा होता है। क्रू मेंबर्स का तो ये भी कहना था कि अजय देवगन टेक्स के बीच में ना साइलेंटली बैठे रहते थे, लाइटिंग और मूड को ऑब्जर्व करते रहते थे और ऑलमोस्ट मेडिटेटिव स्टेट में होते थे। आई गेट दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ऐश्वर्या एंड अजय देवगन फॉर श्योर आर रियली गुड एक्टर्स, लेकिन ऋतुपर्णो घोष एक ऐसे डायरेक्टर साउंड कर रहे हैं कि इनके साथ कोई नॉन एक्टर भी काम करे ना तो हो सकता है ऋतुपर्णो घोष के लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन वो नॉन एक्टर इनके अंडर काम करने के बाद ना एक्टर बन के ही निकलेगा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कोका कोला, अभी यही वर्ड ना बिना होठों को टच किए बोल के बताओ। हाँ, फंस गए ना।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड भले ही आज मैं डाइट कॉन्शियस होकर बिल्कुल ऑफ कोला ड्रिंक्स हो गई हूँ, लेकिन एज अ किड एड्स ये डिसाइड किया करते थे कि कौन सा कोला ड्रिंक खरीदना है, क्योंकि कभी कोई ड्रिंक कोई विनर स्कीम लाता था तो कभी कोई और। मैं तो ना बिल्कुल बिक जाती थी टू द मार्केटिंग आइडियाज, एंड आई यूज टू कलेक्ट एंड कीप कोक की बॉटल्स के ढक्कन, बिकॉज़ आई यूज टू फील लकी कि क्या पता ऐश्वर्या राय से मिलने का मौका ही मिल जाए। दो आई वॉजंट अ क्रेजी फैन ऑफ हर्स, लेकिन आई डेफिनेटली वॉज स्टारस्ट्रक। और राजपाल यादव का ये एड, विच वॉज अ फन थिंग ऑन टीवी एट दैट टाइम, याद है आपको?
2: आपका फूटू रामू जी,
3: रामू जी,
4: इनकी तो किस्मत बदली यार।
1: लक्की रामू थे ये इस एड के, और हम सोचते थे कि जब रामू लकी हो सकता है तो हम क्यों नहीं। कीप ट्राइंग, एंड ऑफ कोर्स मेरी गाड़ी कभी ऐश्वर्या राय तक नहीं पहुंची। हाँ, लेकिन मेरी घड़ी जरूर आगे बढ़ गई, वक्त बदल गया, मैं बड़ी हो गई और समझ में आ गया कि ये सब मार्केटिंग गिमिक्स थे यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म गुप्त। और बात बिल्कुल सही कही गई है, वाकई में मुश्किल बड़ा ये प्यार है। और ये वो जाने जो वाकई में मोहब्बत में पड़ जाते हैं ना, तब उनको रियलाइज होता है कि यार ये तो एक्चुअली मुश्किल है, लेकिन फिर एक पैशन भी होता है करने के लिए, क्योंकि आप मोहब्बत में पड़ गए हो ना, तो आपको फिर ये मोहब्बत को परस्यू करने का जो दिल है ना, वो और बड़ा हो जाता है। एंड यू नो, जैसे शादी का लड्डू होता है ना, वैसे ही प्यार मोहब्बत का लड्डू होता है। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब पछताना वछताना नहीं यार, अब हमें है आगे जाना। मूविंग ऑन विद मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर मैं दो धुनों को मिक्स करके आपके लिए चलाती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो धुने हैं ये कौन से गाने हैं। और आज की जो दो धुने हैं वह कुछ यूं।

बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने हैं कौन से। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इफ यू रिमेम्बर तो एक फिल्म आई थी सुष्मिता सेन, सलमान खान और दिया मिर्जा की। फिल्म का नाम था तुमको ना भूल पाएंगे। बड़ी क्यूट सी फिल्म थी। हालांकि फिल्म का कॉन्सेप्ट वॉज पुनर्जन्म, जो कि वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो सीरियल्स में और पुरानी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। और इस फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है, उस गाने का कॉन्सेप्ट भी कहीं से उठाया गया है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस फिल्म में एक बड़ा ही प्यारा सा गाना था और वो गाना था ये
3: बेखुदी दीवानगी तुम्ही से हर मेरी जाने जाना।
1: Well, the point is कि this गाना, इसकी धुन has been copied from an English song जिसका कि नाम है Time After Time, which was sung by Cyndi Lauper. And the gana goes this way. And if you're wondering कि इस गाने को कंपोज किसने किया था, तो that was Sajid & Wajid. बड़े दिनों बाद कोई नई जोड़ी का नाम निकल के आया है इस कट कॉपी पेस्ट गैंग में। You know the usual names जो फ्लोट करते रहते हैं। और अगर आपके पास भी 90s या early 2000 की ऐसी कोई मूवी या फिर कोई गाना है जिसके बारे में आपको पता लगा है कि ये कहीं से कट कॉपी एंड पेस्ट है, तो DM करो on my Instagram handle which is Mirchi Sara and stay tuned to Mirchi It's Hot।
4: Radio Mirchi It's Hot।
5: Mirchi It's Hot।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आज बड़े होकर हम क्या ये कैमोमाइल टीज पीते हैं यार अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए। टैल्कम पाउडर का नाम सुना है? ये
2: है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वाकई में यार टैल्कम पाउडर की खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं है भाई, थेरेपी है। मतलब ऐसा है कि अगर कोई टैल्कम पाउडर लगा के आया होता है ना, या कहीं से भी एकदम एक यू नो खुशबू सी आ जाती है, एक हवा में तैरती हुई खुशबू सी आ जाती है, तो भाई हम तो खो जाते हैं। हमारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है ना, सब भूल जाते हैं। एंड नर्वस सिस्टम आई टेल यू वाकई में इतना काम डाउन हो जाता है ना, अपने आप जो जितना भी स्ट्रेस है ना वो कहीं दिमाग के कोने में जाके छुप के डर के मारे बैठ जाता है, बिकॉज टैल्कम पाउडर की खुशबू जो है वो टेक ओवर कर लेती है यार। और ये सब तब है जब आज के जमाने में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के परफ्यूम्स आ गए हैं, उस पर भी जब कभी टैल्कम पाउडर की खुशबू आती है ना यार, तो परफ्यूम्स की खुशबू से तो ऑफकोर्स अच्छा तो लगता है कि हाँ क्या खुशबू है, वाह वाह वाह। लेकिन टैल्कम पाउडर की खुशबू से जो नशा होता है और जो हमारी आंखें बंद होती हैं और हम तैरता हुआ महसूस करते हैं, वो और किसी में नहीं है भाई ये जादू। हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे ऑल ऑफ अ सडन हमारी जिंदगी में एक ट्रांजिशन हो गया है एंड वी टर्न इनटू द टैल्कम पाउडर के एड का एक किरदार। आप बताओ आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि टैल्कम पाउडर की खुशबू आए नहीं कि दिल का कोई ऐसा तार छिड़ जाता है कि हम भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, बस टैल्कम पाउडर की खुशबू ही हमें सुकून दे रही होती है। कुछ तो बात है यार टैल्कम पाउडर की खुशबू में, बचपन से लेकर आज तक भी ना ये जादू इसी तरीके से काम कर रहा है। मेरी कजिन है वो बहुत टैल्कम पाउडर लगाया करती थी, लेकिन शी ऑलवेज यूज्ड टू स्मेल सो प्लेजेंट कि उनके पास बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि मुझे उनसे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, मुझे एक्चुअली उनके टैल्कम पाउडर से मोहब्बत थी। आप भी बताओ ना यार आपकी टैल्कम पाउडर की मोहब्बत किस हद तक गई हुई है। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर स्कूल के बाहर ठेले पर मिलने वाली इमली।
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज न जाने क्यों तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हें याद है स्कूल की आखिरी घंटी बजती नहीं थी और हम पहले से ही बस्ते की जगह जेब टटोलना शुरू कर देते थे सिर्फ 2 रुपए के लिए। वही 2 रुपए जो मम्मा टिफिन के लिए दिया करती थी, लेकिन मन तो तुम्हारी तरफ ही खिंचा चला जाता था। तुम कोई आम इमली तो नहीं थी ना, तुम तो वो ठेले वाली इमली थी जो न्यूज़पेपर या मैगजीन के पेपर के ऊपर बिछा कर दी जाती थी। ऊपर से लाल मिर्ची और काला नमक का जादू बिखेर दिया करते थे भैया उस पर छिड़क कर। कभी कभी लगता था कि वो मसाला नहीं, हमारे बचपन की शरारतों का कोई राज है। तुम्हारे ठेले पर ना भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरी क्लास ही वहाँ इकट्ठा हो गई हो। लड़कियाँ बड़ी नाप तोल कर कहती थी कि भैया थोड़ी और इमली देना ना, मसाला थोड़ा ज्यादा कर दो ना। और ठेले वाले भैया जो रोज एक ही तरह के कपड़े में नजर आया करते थे, वो कभी मुस्कुराते कभी टेंशन में होते और जल्दी जल्दी काम करते हुए सबको फटाफट फ्री करने की कोशिश कर रहे होते थे। कभी सोचा ही नहीं था यार कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब इमली से ज्यादा कीमती चीजें मिलेंगी, पर तुम जैसी सादगी फिर नहीं मिलेगी। आज जब बड़ी बड़ी दुकानों पर सब कुछ पैकेट में मिलता है ना, साफ सुथरा ब्रांडेड, लेकिन बेमजा। तो तुम्हारी वो अखबारी खुशबू, वो मसालेदार स्वाद और वो हाथ से इमली का मजा चखते हुए और चाटते हुए जो हम हरकतें किया करते थे ना, वो सब याद आता है। शहर तो बहुत बदल गए हैं, पर तुम आज भी वहीं हो, किसी पुरानी स्कूली बच्चे की याद में, किसी भूले हुए ख्वाब में या फिर किसी आरजे की कहानी में। तुम्हारी वो खट्टी मीठी दोस्त जो अब बड़ी हो गई है, लेकिन दिल आज भी स्कूल की आखिरी घंटी के इंतजार में बैठा रहता है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: उदित नारायण, अलका याग्निक जी की आवाज में राजा फिल्म से दिस गाना इस कैसेट के साइड बी का पांचवा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: डम डम डरी रम डम डरी रम डम डरी रम। ये म्यूजिक यार, ये दिमाग से जाता ही नहीं है। इट्स सच अ वंडरफुल अपबीट म्यूजिक। और इस गाने की पिक्चराइजेशन में ना मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या पसंद आया था? माधुरी दीक्षित ने वो जो व्हाइट कुर्ता नहीं पहना हुआ था, वो मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना माधुरी के ऊपर। इनफैक्ट ये जो मैंने बचपन में पहली बार माधुरी दीक्षित को कुर्ते में देखा, बंदे का कुर्ता है ऑफ कोर्स, वो बंदियों वाला कुर्ता है भी नहीं, ये देखने के बाद आई फेल्ट लाइक यार ये तो मुझे भी चाहिए। एंड वहीं से इंस्पायर होके आई आल्सो हैव अ मर्दों वाला व्हाइट कुर्ता। अच्छा लगता है यार घर में कभी कभी पहनने में। एंड सच बात तो ये भी है कि कंफर्टेबल भी बहुत होता है। वेल कमिंग बैक टू दिस सॉन्ग, एक्चुअली इस गाने की पिक्चराइजेशन की एक बड़ी ही खूबसूरत बात है कि एक तरफ तो ये दिखाते हैं कि दो जवान दिलों की धड़कने मिल रही है और बाकी जो पब्लिक है दे आर ऑल ओल्डी। मगर वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, और इस गाने में जो ओल्डीज के एक्सप्रेशंस है ना, वो मुझे संजय कपूर के एक्सप्रेशन से भी ज्यादा अच्छे लगे यार। क्या पार्टिसिपेशन है यार वो पूरी की पूरी गैंग का। और ये गाना ना हम यहाँ तक ही गा पाते थे कि जादू कोई छाने लगा, मुझको मजा आने लगा, बस में नहीं है अरमां मुझे सीने से लगा। इसके आगे हम किस में आगे गा ही नहीं पाते थे, शर्म जो आती थी ना एज अ किड। हमारे लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करना आसान नहीं था यार, हम उस जेनरेशन को बिलोंग करते हैं। चलो जी, नाउ विद दिस कमिंग अप दिस ट्रैक आपके लिए। और जाते जाते अब आपसे कह देती हूँ कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Energy. It's hot.

0: कहते हैं आरडी बर्मन छोटे होते जब रोते थे तो पांचवें सुर में रोते थे, सारे गामा पा पा वाला जो सुर होता है उसमें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आरडी बर्मन दी आरडी एक्स ऑफ म्यूजिक, और वो जिस भी सुर में रोते हो, जो असला बारूद उन्होंने म्यूजिक का क्रिएट किया है ना, वो फिनोमिनल है। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने अपने पहले सुपरहिट गाने, इस ट्रेंड सेटिंग गाने के बारे में क्या कहा था।
1: ये एक कमाल चीज है, इतने बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाए और वन टेक ओके होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये है साहब कमाल की किस्सा जो हमारे लाइफ में एक यादगार सी चीज है। नासिर आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे गिर पड़ा, बाप रे बाप इतनी बड़ी बात बोल दी, और कौन कह रहा है, शम्मी कपूर कह रहा है, तो मुझे ये तो मालूम नहीं साहब कि ट्रेंड सेट हुआ ना क्या हुआ ना हुआ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि उसके बाद काफी लोग जैसे ब्रास ओरिएंटल सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, थोड़ा जैज टाइप की म्यूजिक, थोड़ा सा उस टाइप की म्यूजिक, रॉक टाइप की म्यूजिक, वो इंडस्ट्री में काफी लोग ने शुरू किया। डिफरेंट
0: तो सुन लेते हैं ट्रेंड सेटिंग गाना ऑन आरडी बर्मन स्पेशल पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: धोक दूं पाए लागू आरडी बर्मन साहब के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना हैंड्स डाउन उनका वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस है। सत्ते पे सत्ता का ये गाना, जिसमें बहुत सारी आवाजों में खुद आरडी बर्मन की आवाज भी थी एज अ सिंगर, और उससे जुड़े एक इंसिडेंट के बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ ना कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ, कुछ एक अलग तरीके की आवाज निकले। मुझे याद है कि एक गाना जो किया था रफी साहब के साथ में गाया था, यमा यमा जो गाना किया था, जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब। तो रफी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, बाद में हम डब करेंगे। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रफी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूं, तो प्लीज ये कर। हाँ जरूर एक डेट फिक्स करते। लेकिन इट्स सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो गुजर गए, तो वो वैसे के वैसे गाना रह गया।
0: तो चलिए इन दोनों लेजेंड्स को याद कर लेते हैं ये गाना सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: बहुत हैरत की बात है कि आरडी बर्मन जैसे म्यूजिशियन को अपने करियर में कुछ खास अवार्ड्स नहीं मिले। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में ऐसा कहा जाता था कि इन अवार्ड्स में काफी मैनिपुलेशन होता था या बायस भी होता था, और इन सब चक्करों में आरडी बर्मन काफी सीधे साधे भोले भाले रह जाते थे। इनके ऊपर ये एलिगेशन भी लगाया जाता था कि ये मॉडर्न म्यूजिक वाले गाने ज्यादा बनाते हैं, क्लासिकल वाले नहीं। पर ये बंदा तो मस्त मलंग था, मन की करता था। इस बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था।
1: मैं बहुत कुछ क्लासिकल तो सीखा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं राग झिंझोटी में मैं और मालकोस में ये कोशिश की, ऐसा तो हम कहते नहीं। हमको जो दिमाग में आता है और जो सुनने में अच्छा लगता है वो हम बनाते रहते हैं। वो कभी कभी राग में भी आ जाता है, कभी राग भ्रष्ट भी हो जाता है।
0: राग भ्रष्ट हो जाता है। कितने क्यूट है यार। एक बार सुनिए अपनी टूटी फूटी हिंदी बोलने के बारे में एक बार क्या कहा था इन्होंने।
2: और माफ कीजिए मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि मैं बंगाली हूँ।
0: वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो जुबान बोलते थे वो सबको समझ में आती थी, प्यार और संगीत की। पुरानी जीन्स पर आज आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ।

0: ये जोड़ी जैसी जमी थी ना, ऐसी जोड़ी कोई जम नहीं सकती है फिर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, द लेजेंडरी जोड़ी ऑफ आरडी बर्मन एंड आशा भोसले जी। आशा भोसले जी के एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था कि आरडी उनके लिए क्या थे।
1: एक तो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरा बहुत अच्छा फ्रेंड और बड़ा ही मूडी फ्रेंड। उसकी एक छोटी सी बात बोलती, उसके सामने चाय रखा तो पहले उसमें पानी डाल देता था और फिर पीता था। तो मैं हमेशा सोचा करती थी फिर चाय क्यों मंगा, ऐसे अच्छा गर्म पानी मंगाता या ठंडा पानी मंगा। लेकिन ऐसे उसके अजब मूड थे, सिगरेट जला के रखेगा वो सिगरेट पूरी जल जाएगी वहीं पड़ी पड़ी, फिर दूसरी जलाएगा, ऐसे सिगरेट जलाता रहेगा। लेकिन सोच में इतना मूडी था। पंचम ऐसा दोस्त था कि ये सुन ये गाना कैसे है, ये सुन ये साउथ अमेरिकन म्यूजिक सुन, अभी अफ्रीकन सुन, अब ये सिंगर, और इसमें हम पूरी रात इसकी निकल जाती थी। तो मैं बोलती थी पंचम मेरे को कल गाना रिकॉर्ड करना है, तुम तो सोते रहोगे लेकिन मेरे को बैठे बैठे गाने सुनना, फिर से लगाना फिर से लगाना।
0: तो फिर से लगा देते हैं ये आइकॉनिक गाना आशा भोसले आर डी बर्मन की आवाज में, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, कारवां फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आरडी वर्मन 1961 से फिल्मों में इंडिपेंडेंटली म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन सक्सेस उनके हिस्से में आया 1966 में विद तीसरी मंजिल का म्यूजिक। क्या ही आइकॉनिक ट्रेंड सेटर, फिनोमिनल म्यूजिक है वो। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनको इस फिल्म के म्यूजिक का ऑफर मिला और उसके बाद क्या क्या मुश्किल आई।
1: एक दिन क्या हुआ, मिस्टर नासिर हुसैन जी का नाम है, उन्होंने मुझे खबर दी, कहने का आप आइए मुझे सुनाइए आपका कोई अगर स्टॉक वॉक हो तो। उस जमान बहुत हम लोग स्टॉक रखा करते थे। गया जाके उनको सुनाया, हमारे पास जो जो गाना था ट्यून सुनाया, सब कुछ किया, तो उनको बहुत पसंद आया। क्या था, उनके जो हीरो था वो देवानंद साहब, कुछ गड़बड़ हुआ, वो पिक्चर उन्होंने किया नहीं। उसका बाद पता लगा कि शम्मी कपूर हीरो हो गया। अब शम्मी कपूर हीरो हो गया तो शम्मी कपूर का तो पूरा किंग था ना, शंकर जी थे, जय किशन जी थे, सब थे, तो मैं समझा कि मेरा तो पत्ता कट गया। नासिर साहब ने कहा कि देखो भैया ये तुम्हारा एक टेस्ट है ना, आपको जो जो गाना है वो आपको शम्मी कपूर को सुनाना पड़ेगा। तो शम्मी कपूर जी आए हमारे म्यूजिक सिटिंग में, आए बोले पंजाब सुनाओ। तो हमने पहली एक फोक ट्यून सुनाया, वो नेपाली गाना था, जुलपानी हुई नो तारा, इतना सुना है। तो सेकंड लाइन से शम्मी कपूर गाना शुरू कर दिया।
0: शम्मी कपूर क्या, पूरी दुनिया वाइब कर रही थी इस फिल्म के म्यूजिक के साथ और करती है आज तक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आरडी बर्मन स्पेशल।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
3: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: हिंदी फिल्म संगीत के सबसे यूनिक म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वेल, इस यूनिक म्यूजिक कंपोजर की फिल्म इंडस्ट्री में दो फिल्म मेकर्स के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन थी। एक तो नासिर हुसैन साहब, जिनके साथ तीसरी मंजिल से इनके सफलता की शुरुआत हुई। ये दूसरे कौन थे, इनके बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने क्या शेयर किया था।
1: ग्रुप देखो, एक नासिर साहब के साथ तब से मेरा दम जोड़ हो गया। एक मुझे और एक फकर है कि जैसा शंकर जयकिशन जी थे, काफी लोगों के साथ उनका ट्यूनिंग था, उसी तरीके से मेरे साथ ट्यूनिंग भी एक आदमी के साथ हुआ। एक प्रोड्यूसर अजीब प्रोड्यूसर है, जिसके पहली पिक्चर हमने की थी द ट्रेन, मेरे ख्याल से 65-67 की बात होगी शायद। तब से लेके उन्होंने जितने पिक्चर बनाए, दर्जन के ऊपर हो गया पिक्चर, मैं उन्हीं के साथ हूँ। रमेश बहन, दैट्स अ रिकॉर्ड, ये मेरे लाइफ का एक कमाल रिकॉर्ड है।
0: द ट्रेन फिल्म का जिक्र इन्होंने किया, द ट्रेन वही फिल्म है

जिसके सुपरहिट गाने का कवर वर्जन बना बना के पब्लिक हटती नहीं है, थकती नहीं है, इतना सुपर फिनोमिनल गाना है वो। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आरडी बर्मन ना म्यूजिक के लिए ऐसे भूखे प्यासे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसीलिए नए नए तरीके सीखते रहते थे। सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या इंसिडेंट शेयर किया था जब म्यूजिक कंपोजर रोशन साहब उनके घर आए थे।
1: तो एक दिन रोशन जी घर पे आए, पिताजी के साथ गुफ्तगू करते रहे, तो पिताजी ने बहुत तारीफ कर दी, भाई तुम्हारी ये पिक्चर देखी, ममता बहुत अच्छा गाना बनाया ये। तो उन्होंने कहा आपको शायद मालूम नहीं एक बात सीक्रेट, तो उन्होंने गाना किया था रहे ना रहे हम, उन्होंने कहा कि आपके एक पुराना गाना है उसमें से हमने मीटर ली, मीटर मतलब छंद। तो एक गाना उन्होंने गा के सुनाया, क्यों रोशन जी ने।

बोले कि आपका ये इतना प्यारा गाना था, देखिए हमने बना ली। ये सब क्या स्कूलिंग है, तब से हमने क्या किया, कोई गाना हिट गाना हो, ये सब गाने के जो मीटर होता है ना, उसमें से हम लोग कुछ गाने बनाने की कोशिश करते। मिसाल के तौर पर यही गाना देखो, ठंडी हवा का रोशन जी ने बना दिया, रहे ना रहे हम, मैं दूसरा बोल से गाता हूँ। देखो

0: छंद सेम है, सब कुछ वही है, इस तरीके से हम लोग नए नए गाने बनाने की कोशिश करते।
1: सागर फिल्म, ये पूरी एल्बम ही क्या एल्बम थी भाई, एक एक गाना इसका नगीना, और ये वाला जो हम सुनने वाले है ना, ये तो उफ तौबा, ये कोई ऐसा प्यार में पड़ा इंसान नहीं होगा जिसको ये गाना पसंद नहीं होगा। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: Mirchi. It's hot.
1: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन

0: जीनियस लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ऐसी सिचुएशन में कई बार काम करना मुश्किल हो जाता है। एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने शेयर किया था कि किन के साथ काम करते करते अक्सर वो काफी अटक जाते थे।
1: एक आदमी के साथ तो बहुत अटकता है, उसका नाम है गुलजार। हम एक पिक्चर कर रहे थे आंधी, आंधी में जो उन्होंने गाने लिख के लाए वो कुछ लैंग्वेज या तो मुझे समझ में नहीं आया ना उसका मीटर समझ में आया। तो मैं बोला देखो भाई ये तो हम काम नहीं कर सकते इस तरीके से। फिर वो बोलने लगा यार तू थोड़ा ट्राई कर यार, कुछ होगा, ये करेंगे वो करेंगे। फिर करते करते हम एक दिन बैठ के मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा यार उसका मीटर अलग होता है, एकदम मिलता ही नहीं। तो वो करते करते हट से मैं गा दिया गाना, ट्यून किया। फिर जब ट्यून किया मुखड़ा जब बन गया, मैं बोलेगा मुखड़ा तो बन गया, अभी अंतर तुमको ट्यून में लिखने पड़ेगा। अब वो फंसता है, अब वो घर से चले जाता है, सोचना शुरू करता है कि अब तो मुझे ट्यून में लिखने पड़ेगा। फिर फोन करते क्या है यार जो लिखा था, उन्होंने नहीं तुम्हारा ये समझ में नहीं आता है, अभी तुमको मीटर में करेक्ट मीटर में लिखने पड़ेगा। फिर वो ध्यान से वो करते रहते करते करते कुछ ना कुछ हो जाता है।
0: कुछ ना कुछ भाई बहुत बड़ा कुछ बना के दिया इन दोनों जीनियस बंदों ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इनके कॉम्बिनेशन का ये आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं। आंधी फिल्म से दो और जीनियस लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: बाकी के म्यूजिशियंस म्यूजिक बनाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे और पंचम ऑब्जेक्ट्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप आरडी बर्मन स्पेशल ऑन पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। ऑब्जेक्ट्स लाइक दो ग्लास खड़का दिए, टेबल उठा के बजा दिए, सैंड पेपर से आवाज निकाल ली। इनकी वैरायटी और रेंज इतनी वास्त थी, इसका कोई और छोर ही नहीं था। मतलब एक तरफ ये बंदा कैबरे सॉन्ग्स बना रहा है, दूसरी तरफ अमर प्रेम जैसी एल्बम। सुनिए इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में एक बार आरडी बर्मन ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: अमर प्रेम को तो बहुत, वो भी और एक पिक्चर थी जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने मिलके मिलजुल के काम किया, उसमें पिताजी ने भी काम किया। वो क्या था, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो पिताजी एक गाना गाया करते थे, बहुत पुराने गाना, उनका ही लिखा हुआ बंगाली बोल, मैं सुना दूं। बैला बोई जा, अभी बोल बंगाली में बैला बोई जा मतलब वक्त गुजरता जाए।
0: रैना बीती जाए, क्या ही खूबसूरत गाना है। सारे गाने इस फिल्म के इतने सुंदर हैं यार। और अभी हम इस फिल्म का वो गाना सुनेंगे जिसको सुन के अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत टेंशन ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो इसको सुन के हम सोचते हैं छोड़ो ये ना सोचो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: रानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना। मैंने नहीं, तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की।
0: है ही तारीफ के काबिल भाई। इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी जिसको कोई मैच नहीं कर सकता है। पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey, Julie!

पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये तो आपको पता है ना कि आरडी बर्मन अपनी टीनेज से ही अपने फादर एसडी बर्मन साहब को म्यूजिक कॉम्पोजिशन में असिस्ट करते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड बकायदा कुछ फिल्मों में इनको क्रेडिट भी दिया गया है, चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, गाइड, तीन देवियाँ। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए इन्होंने अपने फादर के बारे में क्या किस्सा शेयर किया था।
1: पिताजी हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस आके हमारा एक छोटा सा बंगला था, वहाँ पे आके बैठते थे और चाय पीते थे और मुझे डांटते थे, यार क्या यार मोटा हो रहा है, चलते नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं। मतलब एक दिन वो आए वापस, आने के बाद उन्होंने कहा कि पंचम आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक उन्होंने कभी भी तारीफ नहीं की, तारीफ कर रहे कुछ क्या, हमें नहीं, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम अच्छा कर रहे हो। हर रोज मैं सुबह जाता हूँ वहाँ पे, कुछ लोग भी टहलते रहते हैं, कुछ बच्चे भी टहलते रहते हैं, कुछ लड़कियाँ टहलती रहती है, कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं कि ये देखो एसडी बर्मन जा रहा है, तो मैं मन में सोचता था मेरा फैन है, आज कमाल हो गया हमने, क्या हमने आज बोलने लगा ये देखो आरडी बर्मन का बाप जा रहा है। वो मोमेंट मेरी लाइफ का एक कमाल का मोमेंट।
0: भाई मम्मियाँ तो अक्सर बच्चों की तारीफों में पुल बांध देती हैं, लेकिन पापा से तारीफ मिलना वाकई लाइफ का प्रेशियस मोमेंट है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आरडी बर्मन स्पेशल में ऑन मिर्ची।

पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आपको पता है आर डी बर्मन का पहले बचपन का निक नेम टुबलू रखा गया था, टुबलू। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर उनका नाम पंचम कैसे पड़ा, इस कहानी के ऐसे बहुत सारे वर्जन्स हैं। एक वर्जन कहता है कि अशोक कुमार दादा मुनि जी ने नोटिस किया कि आरडी जब छोटे से बेबी थे तो ऐसे प प प प की साउंड बहुत निकालते थे, तो इनका नाम पंचम पड़ गया। वैसे एक बात तो है कि आरडी जब तक जिंदा थे ना, मन से बच्चे ही थे। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इस बारे में गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरती से बात की थी।
1: बच्चों की तरह महसूस कर लेना एक बहुत कमाल की खूबी है, और इन्होंने बच्चों के गाने जो दिए हैं, जैसे एक फिल्म थी मासूम जिसमें लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, इस तरह के गाने वो जब तक बच्चे की तरह आदमी महसूस ना कर सके, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से गाना कंपोज कर सकता है। परिचय में सारे के सारे गांवों को लेकर गाते चले, किताब का गाना आ आ ई ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, जब तक आदमी वो लड़कपन या वो स्कूल बॉयश मिजाज या टेम्परमेंट वो ना हो आदमी में, तब तक ये इस तरह के गाने कंपोज करना बड़ा मुश्किल काम है।
0: मुश्किल से कामों को बड़ा आसान सा बना लेते थे पंचम अपनी मासूमियत से। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार।

पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

जान के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ।

की फूटी किस्मत जागी दम दबा के बिल्ली भागी चूहे की फूटी किस्मत जागी दम दबा के बिल्ली भागी चूहे की फूटी किस्मत जागी आ

वाइफ मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड फाइटर वाइफ। बीवी बिगड़े शौहर अकड़े, रोज के झगड़े रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े।

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई।

में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चार

0: किस्मत अंगुदुआ यही नजर न लगे बेबी ऐसे हमत कर हमें क्या मत तुम मुझको मिली है ये है मेरी किस्मत।
1: मिर्चे पे ट्यून्ड इन हो आप और हमेशा हम ये गाना गाते रहते हैं ना कि यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में नहीं बन रही, अब अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे लोग, अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे। बट ऐसी अगर कोई फिल्म एक्चुअल में थिएटर में आती भी है ना तो मेरे और आपके जैसे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं यार। एंड देर हैव बीन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स विच प्रूव की भाई ये बात हमारे बारे में बिल्कुल सच है। अब देखिए, कुछ टाइम पहले वरुण धवन की मूवी आई थी है जवानी तो इश्क होना है, विच हैपन टू बी डेविड धवन की लास्ट डायरेक्टोरियल इज वेल। अब मेरे हिसाब से भाई उस फिल्म की स्टोरी लाइन वॉज कम्प्लीटली सेंसलेस, जो जोक्स थे वो एकदम आउटडेटेड थे और मैंने देखा कि लोग उस मूवी को थिएटर में चेरिश कर रहे हैं। बट देन ऑन द कॉन्ट्ररी इम्तियाज अली की भी फिल्म आई मैं वापस आऊंगा और इस मूवी को थिएटर में जिस लेवल का प्यार मिलना चाहिए था शुरुआत से ही उतना मिला नहीं। ये बात और है कि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अब ये फिल्म थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है एंड ऑल इन ऑल इसने 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर ली है। बट ये हुआ आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ द मूवीज रिलीज एंड दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब कोई अच्छी फिल्म आती है तो आप उसको अच्छा सपोर्ट नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस हमारी जिम्मेदारी भी बनती है यार। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: लो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। आप कहाँ ये चले जा रहे हो, नॉटी नॉटी नॉटी। एनीवे, लाइक यू नो, हर दिन मैं एक मिर्ची फिल्मची ढूंढती हूँ अपने इस गेम के थ्रू। और द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, यानी मिर्ची श्रुति के प्रोफाइल पे जाके डीएम करना होता है अपना नंबर, देन आई कॉल यू और उसके बाद हम ये गेम का सिलसिला जारी करते हैं। तो आज मैंने बैंगलोर फोन घुमाया है, मेरे साथ है प्रियंका। सो आर यू रेडी?
3: यस आई एम रेडी।
0: ओके, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो मैंने सोचा उससे रिलेटेड थोड़ा सवाल रखूं। तो इट इज अबाउट फिल्म फैन, तो फैन के लीड एक्टर का नाम क्या है?
3: शाहरुख खान।
0: क्या बात है, शाहरुख खान किस फिल्म में पंजाब पावर में काम करते हैं?
3: रब ने मिला दी जोड़ी।
0: आसम, रब ने बना दी जोड़ी की तानी पार्टनर का रियल नेम क्या है?
3: अनुष्का शर्मा।
0: ऑसम, अनुष्का शर्मा का किस फिल्म में गारमेंट बिजनेस होता है?
3: सुई धागा।
0: सुई धागा के मेल लीड का नाम?
3: वरुण धवन।
0: वरुण धवन की फिल्म विद शाहरुख खान?
3: वो गैंगस्टर वाली मूवी थी।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रही हैं आप।
3: दिलवाले।
0: दिलवाले में कृति की बहन का रोल किसने प्ले किया है?
3: काजोल।
0: काजोल वास को गमला किस फिल्म में बुलाती है?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: कभी खुशी कभी गम में काजोल की बहन कौन बनी है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें उनकी ट्रेन कई बार छूट जाती है?
3: जब वी मेट।
0: जब वी मेट में आदित्य का रोल किसने प्ले किया है?
3: शाहिद कपूर।
0: मतलब कहीं तो रुक जाइए। शाहिद कपूर को किस फिल्म में इंसोम्निया होता है?
3: इंसोम्निया शानदार।
0: ऑसम, यहाँ मुझे लगा था कि अटकोगे आप कम से कम, फिल्मची तो है आप। ओके, शानदार फिल्म में पंकज कपूर किसके पापा बनते हैं?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट की फिल्म विद हर हस्बैंड?
3: ये ब्रह्मास्त्र।
0: ओहो, ब्रह्मास्त्र में रणबीर के गुरु कौन बनते हैं?
3: अमिताभ बच्चन।
0: दीदी कहीं तो रुक जाओ। अमिताभ बच्चन को किस फिल्म में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है?
3: पीकू।
0: पीकू में टैक्सी ड्राइवर कौन बने थे?
3: इरफान खान।
0: इरफान खान की फिल्म जिसमें वो हेयर स्टाइलिस्ट बने हैं?
3: बिल्लू बाबर।
0: बिल्लू में इरफान के बचपन का दोस्त
3: शाहरुख खान।
0: भाई आप ना लेजिट, आज पहली बार हुआ है ये कि किसी इंसान ने ये पूरा का पूरा गेम एक गो में खत्म किया है। दैट इज सो ऑसम।
3: थैंक यू सो मच।
0: तो इसी बात पे डिक्लेयर कर ही देते हैं यार,
1: मिर्ची फिल्मची।
0: वेल, अगर आप भी ये गेम मेरे साथ खेलना चाहें तो यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके डीएम में अपना नंबर भेजना है एंड रेस्ट इज माय वर्क। फिलहाल आगे आने वाले गाने एंजॉय करते हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

The Drop.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

समझे पहली नजर में हो गया है तुमसे प्रेम।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो